के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफाइन गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ, चैनपुर बजार त्रिचोक, प्रोभाइडर पदम रसाइली, ममता रसाइली। सम्पर्क 9861237744 र 9153577।

श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम जी की बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठने। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त विचार?
1: के विचार? को फुलीवाली? मसु बहिनी।
0: बहिनी त साली, तिमी त अनि मेरो फुलीवाली।

पाखरीबास एफएम समय सूचक यो पाखरीबास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

0: お前で、おじ、おじ、おじ。おじ、倒してやれ。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे अरे ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो तू चार गाली खुआ ले बुका अरे अरे ए ए
1: आ जिगर पलट

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले रात को 9 बजे